0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ছয় বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই সৰফিৰোজি। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज राशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. West Bengal government has decided to implement the Uniform Civil Code UCC in the state. Chief Minister Suvendu Adhikari announced in the assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled state cabinet meeting on Thursday. Following the models of Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Desai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on a total of 9 subjects, including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. India has strongly condemned Pakistan's airstrikes on Afghan territory that have resulted in several civilian casualties, including women and children. In a statement, External Affairs Ministry said this blatant act of aggression by Pakistan is an assault on Afghanistan's sovereignty and a direct threat to regional peace and stability. It reflects Pakistan's persistent pattern of reckless behavior and its futile attempt to externalize internal failures through desperate acts of violence beyond its borders. India conveyed its condolences to Afghan families that have lost loved ones and prayed for early recovery of those injured. India also reiterated its unwavering support for Afghanistan's sovereignty and territorial integrity. The Indian Army has dismissed media reports claiming that the Chinese People's Liberation Army, PLA, recently encroached into Arunachal Pradesh and set up camps. The Army said that such reports are incorrect and without any basis. Ahead of the 57-day annual Amarnath Yatra beginning on Friday, security agencies have intensified preparations across the pilgrimage route from Punjab to Jammu and Kashmir, conducting mock drills, activating surveillance systems and strengthening inter-agency coordination to ensure the safe movement of thousands of pilgrims. The first batches of pilgrims have started arriving in Jammu and Kashmir, while security forces remain on high alert with elaborate arrangements in place along the Jammu-Srinagar National Highway, transit camps and the twin routes leading to the holy cave shrine nestled in the Himalayas. Meanwhile, Special Operation Group SOG of the Jammu and Kashmir Police and National Security Guard NSG conducted a joint counter-terror mock drill at the historic Raghunath Mandir in Jammu yesterday, ahead of the Amarnath Yatra. The exercise simulated a high-risk terrorist attack scenario, testing the response capabilities of security agencies through rapid intervention, area domination, hostage rescue, casualty evacuation, and coordinated operations. And that is the end of this news bulletin.
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰ 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত অনুষ্ঠান পৰিচিতি

0: অন্যান্য খিনি মাথাৰ ভাগিছে বা বেয়া হৈছে, আটাইখিনি চাই পেলাই এছেছ কৰা হৈছে যাতে আমি অতি সোনকালে কামখিনি কৰিব পাৰো। আৰু যিসকল লোকে আজি ঘৰ বাৰী ভাগি পৰিছে বা অন্যান্য যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, অতি সোনকালে আমি ক্ষয় ক্ষতিৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি চেষ্টা কৰিম এক মাহমানৰ ভিতৰতে তেখেতসকলক আমি যাতে যিখিনি প্ৰাপ্য সেইখিনি দিব পাৰো।
1: বিশ্বনাথ জিলাতো হেলেম আৰু গহপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ 20খন গাঁও আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া আৰু সোৱণশিৰি ৰাজহচক্ৰৰ 15খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে সম্ভাৱ্য বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলাৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। ইপিনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বানৰ সময়ত বন্য জন্তুসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি পাৰ হোৱাৰ বাবে জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 6টা এনিমেল কৰিডৰত অত্যাধুনিক ছেন্সৰ কেমেৰা সংস্থাপন কৰা হৈছে। এই পথছোৱাৰে 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক বেগত যান বাহন চলাব নোৱাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখ, অফলা, খৰাগুৰিকে ধৰি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ কালি শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাই পৰিদৰ্শন কৰে। তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক বানৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা দিয়ে। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীদিহিঙৰ কৃষকসকলৰ সৈতে কালি ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু উদ্যোগ বাণিজ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল উপস্থিত থাকে। বৈঠকত আলু খেতিৰ প্ৰস্তুতি, জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আৰু কৃষকসকলক লাভৱান কৰি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ পোষকতা কৰা হয়। মন্ত্ৰী শ্ৰীবৰাই অঞ্চলটোৰ মাটিৰ উপযোগী বিভিন্ন শস্যৰ খেতিৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত অসমত কৃষিখণ্ডৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হৈছে। কৃষকক আত্মনিৰ্ভৰশীল আৰু লাভৱান কৰি তোলাৰ বাবে চৰকাৰে ভালেমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে নগাঁও জিলাৰ একাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ন আৰু সেৱাৰ কোড আবণ্টনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ সচিব কৃষ্ণা বৰুৱাই নগাঁও সংমণ্ডলৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মুকুল কুমাৰ নাথৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ লগতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহৰ মুৰববীৰ সৈতে আলোচনাৰ পাছতহে সকলো কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব বুলি সচিবগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী আঞ্চলিক বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ প্ৰভাত কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। মুখ্য সমাচাৰ। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
2: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
5: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
6: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
2: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के

0: रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठकर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
5: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे के क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं

0: भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीरगति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान और तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, आपात राहत सामग्री और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्स।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी दिन के 12:10 हुए हैं। सैनिक भाइयों, मैं अमित बांसकोटा आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के प्रसारण में।

सैनिक भाइयों, आपसे कुछ ही पल में हम प्रारंभ करेंगे आज के सुरीले गीतों का सुहाना सफर। पर उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

आपसे कुछ ही पल में आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम 12:30 पर आप सुन पाएंगे आज का गीत। 12:38 पर गीत अपना धुन पर आए।

एक बजकर 5 मिनट पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, एक बजकर 10 मिनट पर एक ही फिल्म के गीत, एक बजकर 40 मिनट पर आप सुन पाएंगे नए तराने।

सैनिक भाइयों, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और 2:30 पर आप सुन पाएंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गुंजन, और इसी के साथ आज के प्रसारण का समापन होगा दिन के 3 बजे।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से, कुमार सानू की आवाज में। आइए सुनते हैं ये गीत।

सनी भाइयों, अभी आपने सुना फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से गीत कुमार सानू की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में दीवाना फिल्म से गीत।

सनी भाइयों, अभी आपने सुना दीवाना फिल्म से गीत विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का यह अंतिम गीत मेट्रो इन दिनों फिल्म से, अरिजीत सिंह और सशवंत सिंह की आवाजों में।

सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं आज का गीत। आज हमने लिया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की युगल आवाजों में तू झूठी मैं मक्कार फिल्म से ये गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

हमेशा की तरह कल भी हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ होगा दोपहर 12:10 से। 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर फिल्मी नगमे।

एक बजकर 5 मिनट पर आप सुन पाएंगे अंग्रेजी में समाचार, एक बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम तरंग, एक बजकर 40 मिनट पर प्रादेशिक संगीत, 2 बजे से बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। सनी भैया 2 बजकर 30 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी, और इसी के साथ दोपहर 3 बजे समाप्त होगा हमारा कल का प्रसारण। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

यो आकाशवाणी गुवाहाटीका प्रागज्योतिषपुर हे मिडियम एफ 279.9 मिटर 1035 किलोहर्ज और डीआरएम फ्रिक्वेन्सी 1026 किलोहर्ज पर सनी भाइयों अब आइए सुनते हैं गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है 20 साल बाद फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ में।

सनी भाइयों, आप सुन रहे हैं गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम। और अभी आपने सुना इस कार्यक्रम का पहला गीत 20 साल बाद फिल्म से। अब आइए सुनते हैं पगला कहीं का फिल्म से ये गीत आशा भोसले की आवाज में।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना पगला कहीं का फिल्म से गीत। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: और तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
1: अच्छा?
0: सबको मालूम है और सबको।
2: सनी भाई, आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म से गीत।

सनी भाई आप सुन रहे हैं गीत अपना धुन पर आए कार्यक्रम, और अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में अंदाज फिल्म से गीत। आइए आप सुनते हैं दिल दौलत दुनिया फिल्म से आशा भोसले, किशोर कुमार और श्रद्धा की आवाजों में ये गीत।

0: एक कयामत हो, नखरा राज नजाकत हो, आँखों में एक दावत हो, तो फिर प्यार भी होगा,
1: बिल्कुल
0: इकरार भी होगा,
1: बिल्कुल
0: दीदार भी होगा,
1: बिल्कुल।

0: सनी भाई, अभी आपने सुना कुर्बानी फिल्म से गीत नाजिया हसन की आवाज़ में, और इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब 1:05 में सुनिए अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Eurobank has launched the UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India International Payments Limited.

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिष प्रेम एरिया में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब से आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे मीडियम वेव 529.1 मीटर पर।

सनी भाइयों, अब आइए सुनते हैं एक ही फिल्म के गीतों का कार्यक्रम। आज हमने लिया है एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम में गुरु फिल्म से कुछ गीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत।

सनिक भाइयों, अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत। अब आइए सुनते हैं मरियम टोलर की आवाज़ में ये गीत।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम, और आज आप सुन रहे हैं गुरु फिल्म के कुछ चुनिंदा गीत। आइए अब सुनते हैं हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत।

सनी भाई, आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के गीत कार्यक्रम, और आज आप सुन रहे हैं गुरु फिल्म से कुछ चुनिंदा गीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का यह अंतिम गीत, उदित नारायण, मधुश्री और श्वेता भार्गवा की आवाजों में।

यो आकाशवाणी गुवाहाटीका प्राग्ज्योतिषपुर है। मिडियम एफ 289.9 मिटर 1035 किलो हर्ज और डीआरएम फ्रिक्वेन्सी 1026 किलो हर्ज पर। सैनिक भाइयों, अब आइए सुनते हैं नए तराने। इस कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है डुनकी फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गीत।

सनी भाई आप सुन रहे हैं नए तराने। अभी आपने सुना इश्क नेक्स्ट डोर फिल्म से गीत कंचन और संदीप गोस्वामी की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं लव यात्री फिल्म से गीत दर्शन रावल और आशीष कौर की आवाजों में।

0: इस गीत के साथ ही नए तरह का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। सनी भाई, अभी दिन के 2 बजने को है, 2 बजे से आप बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद मिड डे न्यूज। The headlines: Eurobank launches UPI-based remittance service from Greece to India. Commerce Minister Piyush Goyal calls it a milestone in India's digital payments expansion. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over US and Iran peace negotiations as Tehran rejects US President Trump's claim of meeting in Doha. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over parts of Uttar Pradesh, Bihar, Central Maharashtra, Konkan and Goa for next 2 days.

0: टैलेंट को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ॉन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य

0: मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि

0: फिलहाल अमरीका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमरीका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का हमारे इस प्रसारण में बहुत बहुत स्वागत है।

यो आकाशवाणी गुवाहाटीका प्राग्ज्योतिष पर है। मीडियम एव 289.9 मीटर 1035 किलो हर्ज और डीआरएम फ्रिक्वेंसी 1026 किलो हर्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुंजन।

सनी भाई, गुंजन कार्यक्रम का यह पहला गीत आपने सुना, साथ साथ फिल्म से, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं रजनीगंधा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

सनी भाइयों, अभी आपने सुना मंजिल फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं बेगुनाह फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

सनी भाई, अभी आपने सुना बेगुनाह फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं कल आज और कल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

सैनिक भाइयों, इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और समाप्त होता है सैनिक भाइयों के लिए हमारा आज का प्रसारण। कल 12:10 पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अमित भास्कोटा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली का ये जो समय है, दोपहर का समय, ये विशेष होता है क्योंकि इसमें होता है रेडियो डॉक्टर और हम बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर हमारा ये शो चलता है विच इज कॉल्ड रेडियो डॉक्टर। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं रिस्क ऑफ टबैको यूज, तंबाकू के इस्तेमाल के नुकसान। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 80 लाख लोग तंबाकू के कारण होने वाले जानलेवा रोगों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। तंबाकू और इसके सेवन से होने वाले घातक परिणामों के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष चंद्रा से, हु इज चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी बीएलके हॉस्पिटल।

0: डॉक्टर चंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग से लेकर जो कम पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो भी जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी इसका सेवन करते हैं। सर
1: जी, तो ये बड़े दुर्भाग्यवश ऐसा सब्सटेंस है तंबाकू जो अब्यूज के दायरे में आता है, और उसका कारण यह है कि ये एडिक्टिव है, और ऑन द फ्लिप साइड ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर्स होते हैं। और मैं तो हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते जानता हूं कि हम जितने यंग हार्ट अटैक्स देखते हैं जो 20-30 की उम्र में हमारे पास आते हैं, उन सब में इनवेरिएबली हिस्ट्री मिलती है कि वो लोग बड़े यंग एज से स्मोक करते रहे, या तो ई सिगरेट्स या कॉमन सिगरेट्स, या तंबाकू च्यू करना बहुत कॉमन है स्पेशली ईस्टर्न यूपी के एरिया में, तो वो सभी इसका शिकार होते हैं। और लंबे अरसे में फिर तरह तरह के कैंसर, जिसमें सबसे प्रमुख है लंग कैंसर, और ये हमारे रेवेन्यूज के, हर देश के रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा ड्रेन है कि उनके खजाने खाली हो जाते हैं इस तंबाकू सेवन से, उनकी जो बहुत प्रोडक्टिव जनता है वो मर जाती है। और दूसरी तरफ अगर आप तंबाकू इंडस्ट्री को देखें तो वो लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे ही हमको तंबाकू यूजर्स बढ़ें, हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिकें। तो ये एक बहुत बड़ी जिद्दोजहद चल रही है सरकार के और इन तंबाकू ग्रो करने वाले बनाने वालों के बीच में। वो चाहते हैं पैसा खूब कमाया जाए, जबकि सरकार चाहती है बड़े से बड़े टैक्स लगा के उसको सप्रेस किया जाए, कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किए जाए, जनता को तरह तरह के कैंपेन से आगाह किया जाए।
0: तो चलिए हम देखते हैं कि आपके तरफ से क्या क्या सवाल आते हैं, और फिलहाल डॉक्टर साहब की पसंद का एक बहुत ही सुरीला गाना, और बता दूं आपको कि डॉक्टर साहब को उदित नारायण, श्रेया घोषाल बहुत पसंद है, और एक और सिंगर आपने
1: मोहम्मद रफी
0: बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए कोशिश करेंगे इन्हीं के गाए गीत आज सुने।

0: हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जिंदगी का जो गुजारा है ना, ये टोबैको के बिना अच्छी तरह से और बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या विवशता हो जाती है कि हम इसके शिकार हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये एक एडिक्शन है, नशा है। एक बार जो शुरू करते हैं तो इसके आदि हो जाते हैं जीवन भर के लिए। डॉक्टर साहब, बात यहां पर आती है कि टोबैको की श्रेणी में किन किन चीजों को गिनाया जाता है। सिगरेट्स में टोबैको होता है और किन किन चीजों में होता है, जैसे कि हमारे एक लिसनर ने भी ये जानना चाहा है। मनोहरलाल गांधी जी हैं चाणक्य चौक गाजियाबाद से, लिखते हैं कि क्या पान मसाला और जर्दे वाली जो चीजें होती है वो भी क्या इसकी श्रेणी में आते हैं
1: जी? तो सिगरेट्स, बीड़ी, ई सिगरेट्स जो आजकल के टीन्स बहुत पीते हैं, और सारे तरह के तम्बाकू, यानी सुरती से लेके जर्दा और जो पान मसाला के अंदर तम्बाकू युक्त पान मसाला है, वो सब सब इसी की श्रेणी में आते हैं
0: जी।
1: और देखिए, जो यूज कर रहा है सिर्फ उसको घातक नहीं है, जो उसके परिवार के सदस्य हैं या उसके जो मित्रगण हैं जो उसके आसपास बैठते हैं, और धुआं जब उनके पास पहुंचता है तो उनको पैसिव स्मोकर्स कहलाते हैं वो लोग, इवन वो लोग इसके शिकार हैं। तो हम पूरे समाज को सावधान रहना है कि सिर्फ स्मोकर्स एंड टोबैको च्यूअर्स ही नहीं, आसपास के फैमिली मेंबर्स और उनके मित्रगण भी उससे इफेक्ट होते हैं
0: जी। तो गांधी साहब ने ये भी कहा है कि तरह तरह के गुटके हर चौराहे वाली गली पर जो है लटके हुए देखे जा सकते हैं, तो ये गुटका किन किन बीमारियों को दावत देता है
1: जी? तो इस गुटके में दो तरह के गुटके हैं, एक तो तम्बाकू युक्त है, एक बिना तम्बाकू के हैं। तो जो बिना तम्बाकू वाले गुटके हैं उनमें सुपारी होने से, लगातार खाते रहने से सुपारी आपके मुंह में इरिटेशन करके वो जीभ के और मुंह के कैंसर प्रोड्यूस कर सकती है बिना तम्बाकू के भी। और जो तम्बाकू वाले गुटके हैं वो इस इरिटेंट कैंसर्स के अलावा जब अंदर उसकी पीक जाती है शरीर में, तो वो तरह तरह के कैंसर, जैसे लंग कैंसर सबसे प्रमुख है, और लंग कैंसर से आज लगभग 18 से 20 लाख पूरे विश्व में मरते हैं हर साल में, तो एक बहुत बड़ी तादाद है। तो दोनों तरह के गुटके घातक हैं, खास तौर से तम्बाकू युक्त गुटके
0: जी। सुनील कुशवाहा जी हैं उन्नाव से, लिखते हैं कि इनके पापा के हार्ट की एक नस जो है ब्लॉक हो गई है, लेकिन तम्बाकू खाना नहीं बंद कर रहे हैं।
1: तो ये तो बहुत मुझे दया आती है इनके पापा के ऊपर, परिवार पे। इन लोगों को हम एक तरह का हेट्रेड इनके खिलाफ क्रिएट ना करके हम उनको दया का पात्र माने, और क्योंकि वो इसके एडिक्शन से पीड़ित हैं इसलिए इसको छुड़वाना बहुत आवश्यक है। और इनके पापा को जान लेना चाहिए कि अगर ये तम्बाकू सेवन करते रहे और उस हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास भी हो चुका है, तो जो बाकी नसें बची हैं उन सब में नए ब्लॉक्स आना शुरू होंगे और उनको बार बार हार्ट अटैक्स होते रहेंगे, इसलिए तम्बाकू पूरी तरह से छोड़ना बहुत आवश्यक।
0: तो डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं इनके परिवार वाले, तो ऐसी स्थिति में परिवार वालों को क्या कोशिश करनी चाहिए?
1: परिवार वालों का दायित्व यह है कि उसको ह्यूमिलेट न करें मरीज को, और उनको तरह तरह के रास्ते दिखाएं कि किस तरह से आप इसे छोड़ सकते हैं। आपका डिटर्मिनेशन बहुत मानी रखता है इसमें, तरह तरह के आसन हैं श्वास के जो हेल्प कर सकते हैं, और कुछ निकोटेक्स या च्युइंगम्स इस तरह की, या कुछ दवाइयां टेबलेट्स भी आती हैं जिससे कि हम तम्बाकू के खिलाफ डिस्टेस्ट पैदा कर सकते हैं मरीज में, और वो मरीज उसको छोड़ सकता है, और ये संभव है पूरी तरह से। हमारे बहुत से लोग तम्बाकू छोड़ देते हैं बाय देयर शियर विल पावर, इट इज पॉसिबल।
0: और अगर इससे भी काम ना चले तो किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, एडिक्शन सेंटर्स हैं वहां इनकी मदद मिलती है और पूरी तरह से ये ठीक हो जाते हैं।
0: हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए साहब।
2: नमस्कार नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार। अरे डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं।
1: बोलिए
2: डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। 24 घंटे में 7 बीड़ी हम पीते हैं और ये

0: हम छोड़ना चाहते हैं, कोई आसान तरकीब बताने की जहमत गवारा करें।
1: तो बहुत अच्छा है कि आपने निश्चित कर लिया है कि आप छोड़ेंगे इसको और आप जरूर सफल होंगे इसमें। इसके लिए तरह तरह की दवाइयां या च्युइंगम्स आती हैं, निकोटेक्स च्युइंगम होती है या सिंपल सौंफ या इलायची है, जब भी आपको तलब लगती है तो वो मुंह में रख सकते हैं और डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपकी बीड़ी पूरी तरह से छोड़वा देंगे। एक बीड़ी लेना भी आपके लिए घातक है, इसलिए जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है।
2: जी तो जितना जल्दी छोड़ दें आपके लिए अच्छा है, और आज ही ये संकल्प ले लीजिए, आज ही ये संकल्प ले लीजिए कि बीड़ी पीना छोड़ देंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो डॉक्टर साहब, अरुण सहानी जी हैं दरभंगा बिहार से, इन्होंने भी लिखा है कि तंबाकू सेवन छुड़ाने का आसान तरीका क्या है, तो अभी आपने कुछ तरीके बताए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि कैसे छोड़ा जा सकता है, तो बीच बीच में हम बताते ही रहेंगे कि कैसे तंबाकू से मुक्ति पाई जा सकती है। एक और कॉलर है। हेलो।
3: हेलो।
2: हाँ जी।
3: हाँ नमस्ते मैम, गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
2: जी नमस्ते गुरविंदर जी।
3: हाँ सर को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर। ये तंबाकू तो ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी है, तो इसके उत्पादन और इसकी सेल पर संपूर्ण बैन क्यों नहीं लगा दिया जाता है? टोबाको जो है तो इस पर भी कोई कानून बना दिया जाए तो ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
1: मैं इसी पे चर्चा करने लगा था कि जो हमारे किसान भाई हैं और जो अपनी धरती में तंबाकू उगाते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि तंबाकू उगाने में कितना उसका जो गैस है उसकी वो कितनी पीड़ित करती है लोगों को, जो उसमें इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिजाइल क्रॉप होती है, उसमें इंसेक्टिसाइड बहुत प्रचुर मात्रा में यूज किए जाते हैं, वो कितने घातक होते हैं। साथ में जो छोटे छोटे बच्चे और यंग नौजवान उस खेती में काम करते हैं, उन सब पे इसका असर होता है। और ये क्रॉप ऐसी है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे वातावरण में बहुत अधिक लेवल पे होता है, तो इसके जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम जो हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं। और इसको सरकार साल दर साल इस पे टैक्सेस और रेवेन्यू पे टैक्सेस बढ़ाती जाती है, सिर्फ इसलिए जिससे कि तंबाकू ना बिके। टैक्स बढ़ाने का मुख्य कारण यह है कि वो चाहते नहीं है कि तंबाकू बाजार में एग्जिस्ट करे, और इसके लिए ग्लोबल वर्ल्ड के लेवल पे मुहिम चल रही है ई सिगरेट्स को बैन करने की, पब्लिक प्लेसेस में तंबाकू और सिगरेट को बैन करने की। कई स्टेट्स ने तो फाइन तक इशू कर दिए हैं कि कोई भी मनुष्य पाया गया अगर ऑफिस में या पब्लिक प्लेस पे पीता हुआ सिगरेट, तो उस पर एक बहुत भारी जुर्माना लगेगा और जेल भी हो सकती है। तो ये सब ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे कि हम शायद इस पे विजय पा सकें।
3: थैंक यू डॉक्टर साहब, और आपके लिए शुभकामनाएं। आपने इस प्रोग्राम के जरिए प्रयास किया है 1-2% लोग भी इसका सेवन बंद कर दें तो आपकी सक्सेस होगी। धन्यवाद सुजाता मैडम। नमस्कार।
2: नमस्कार। थैंक यू। तो सर ये ई सिगरेट क्या है?
1: ये ई सिगरेट ये है कि उससे कोशिश ये करते हैं कि वातावरण में उसका असर ना हो, धुआं बहुत नजर ना आए और हाथ में लेके वो बिना धुए के उसको घूमते रहें, मगर इसके जो घातक परिणाम बिल्कुल नॉर्मल सिगरेट के बराबर होते हैं। ये एक गलत धारणा है कि ई सिगरेट पीने से शरीर को नुकसान कम होगा या वातावरण कम दूषित होगा, इसके परिणाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आम सिगरेट के और उसके होते हैं। और ये यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि ये एडिक्टिव है और नशा इससे बराबर होता है, तो वो लगातार ई सिगरेट वाले पीते रहते हैं इसको पब्लिक प्लेसेस में।
2: और कुछ स्टाइल स्टेटमेंट भी माना जाता
1: और
2: है।
1: एक ये हाँ एक ये फैड माना जाता है कि जैसे अच्छे से बाल बना लिए, अच्छी सी ड्रेस पहन ली, हाथ में ई सिगरेट लेके घूमेंगे, तो ये भी एक फैड है।
2: चलिए इस पर भी और बातें होंगी। और ज्यादातर हमारे लिसनर्स सर यही पूछ रहे हैं कि मैं गुटखे की लत से परेशान हूँ, सिगरेट की लत से परेशान हूँ, कैसे छोड़ा जा सकता है। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है कि उनमें अवेयरनेस है कि वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे।
1: इसके डेडिकेटेड डायरेक्शन सेंटर्स बने हैं, उन पे जाके मदद लें और जरूर कामयाब होंगे लोग।
2: जी तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, डॉक्टर साहब के पसंद का ये गाना जो श्रेया घोषाल की आवाज में है।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का रेडियो डॉक्टर वाकई में विशेष है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उस चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी, और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजी से संबंध रखते हैं, हार्ट से संबंध रखते हैं, तो आपने अभी अभी बताया कि तंबाकू सेवन के कारण हृदय रोग बहुत होते हैं और खास करके जो हमारी यंग जनरेशन है। तो सर, ये जो यंग जनरेशन में अगर हृदय रोग का

0: शिकार हो रहे हैं स्पेशली ड्यू टू टोबैको इनटेक, तो उनकी स्क्रीनिंग कैसे होनी चाहिए?
1: ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने. जैसा मैंने शुरू से कहा है कि जो भारतवर्ष में यंग हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, यहाँ हार्ट अटैक्स लगभग एक दशक पहले होते हैं पाश्चात्य देशों के मुकाबले, और उनमें सबसे प्रमुख कारण टोबैको अब्यूज है. क्योंकि जो अगर 10 हार्ट अटैक के मरीज 30 से 40 की उम्र के आते हैं तो उनमें कम से कम 6-7 लोगों में टोबैको की हिस्ट्री मिलती है, तो तम्बाकू च्यू करते हैं या वो बीड़ी या सिगरेट पीते हैं. और इसके अलावा कुछ लोग इनमें से जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हो सकते हैं, जिनके पेरेंट्स को एक यंग एज में हार्ट अटैक्स हुए हों, या इनकी खान पान की शैली और इनका वजन या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे मुख्य कारण हैं जो जुड़ के यंग लोगों में हार्ट अटैक पैदा करते हैं. लेकिन तम्बाकू सेवन एक ऐसा कारण है जिसको हम अपनी स्वेच्छा से हटा सकते हैं. इट इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड दैट शुड बी इरेज्ड आउट फर्स्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल द रिस्क फैक्टर्स बिसाइड्स द अनमॉडिफाइबल वंस. जैसे किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है या कोई डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर है, तो तम्बाकू उस श्रेणी में सबसे ऊपर है जिसको आप अपने हाथ से हटा सकते हैं और एक बहुत हद तक यंग हार्ट अटैक्स के लोग बच सकते हैं इससे. मैंने, आप कल्पना करिए, मैंने इतने छोटे एक 13 साल के बच्चे की एंजियोप्लास्टी की हुई है. okay. और जब उसको पूछा कि क्यों हुआ तुमको, उसकी आर्टरीज साफ थी, एक आर्टरी में ब्लॉक था, तो बताया गया कि करीब 7-8 साल की उम्र से वो बीड़ी पीता था.
0: अच्छा.
1: और वो किसी आंचलिक गांव के क्षेत्र से था. और देखिए बीड़ी के परिणाम देखिए कि उस 13 साल के बच्चे को, कितने युवकों की शादियां नहीं हुई हैं उससे पहले उनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, और अब जब ठीक हो गए एंजियोप्लास्टी करा के, तो वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा आगे जीवन कैसे व्यतीत होगा. तो तम्बाकू बहुत घातक है. मेरी दरखास्त है लोगों से कि छोड़ें इसको.
0: जी हेलो.
2: जी नमस्कार मैम.
0: नमस्कार.
2: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ.
0: जी जी राजा साहब बोलिए.
2: जी जी बड़ा अच्छा का टॉपिक है तम्बाकू के बारे में. तो डॉक्टर साहब हमारा ये प्रश्न है आपसे कि जैसे हम लोग तो तम्बाकू नहीं खाते, उसका बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सर जो हमारे सफर करने में या हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग सिगरेट बीड़ी गुटखा खाते हैं, तो क्या उनके जो बीड़ी पीते हैं सिगरेट पीते हैं उनका धुआं जो निकलता है, तो क्या वो भी हम लोगों के लिए नुकसानदेह होता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा सवाल उठाया. इसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं.
2: जी जी.
1: यानी कि हम खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आसपास के जो स्मोकर्स हैं उनसे निकला हुआ धुआं सूंघ तो रहे हैं हम, और वो हमारे फेफड़ों में जा रहा है, तो उसके परिणाम भी उतने घातक होते हैं जितने पीने वाले को हैं. और इस पैसिव स्मोकिंग की प्रक्रिया से बहुत से परिवार के लोग भी पीड़ित होते हैं जो मैं बीमारी की चर्चा कर रहा हूँ, तो इससे बचना चाहिए, बहुत आवश्यक.
2: जी जी जी मैम आपका बहुत धन्यवाद मैम.
0: थैंक यू राजा साहब. त्रिलोक चंद सोनी जी का ये मैसेज हम ले सकते हैं, उत्तराखंड टेरे गढ़वाल से है. सर इन्होंने लिखा है कि गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जो हम हुक्का से तंबाकू पीते हैं वो उतना हानिकारक नहीं होता है क्योंकि वो फिल्टर होकर आता है. क्या ये सही है?
1: ये बिल्कुल गलत धारणा है.
0: जी
1: सिगरेट में भी तो फिल्टर लगाते हैं जहाँ पे हम पीते हैं उसको, और तम्बाकू जो गुटके में उसमें यूज होता है हुक्के में, वो बिल्कुल उतना ही घातक है. और आजकल के जो नवयुवक क्लब्स में जाते हैं और वहाँ शीशा और तरह तरह के हुक्का पीने की जो रिवाज है
0: जी,
1: वो भी उतना ही घातक है.
0: ये फैशन ट्रेंड बन गया कि हर जगह हुक्का जो है अलग से रखा जाता है.
1: एक तो हम पॉल्यूशन की मार से ऐसे ही पीड़ित हैं, और ऊपर से ये शीशा और हुक्का लेके हम अपने लंग्स में धुआं इकट्ठा करते हैं, तो ये लोग कैंसर तो एक चीज है, उससे पहले ये ब्रोंकल एस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इन सब डिसीजों से पीड़ित होते हैं, तो इसके परिणाम तो बहुत दूरगामी हैं और इससे जहां तक हो सके बचना चाहिए.
0: जी तो त्रिलोक चंद्र सोनी जी का ये मैसेज मैंने लिया जो अभी अधूरा है, उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से. इन्होंने ऐसा लिखा है इनको कोई प्रॉब्लम है कि ये बीड़ी सिगरेट दारू कुछ नहीं पीते, लेकिन कुछ दिनों से इनका सिर जो है घूम रहा है, चक्कर आने जैसा लगता है और दर्द होता है विशेषकर कनपटी में, और दाहिनी तरफ छाती में जलन भी होती है, तो इन्हें क्या करना चाहिए?
1: ये इस प्रोग्राम से हटके सवाल है, लेकिन इनको पता है हृदय रोग विशेषज्ञ, इसलिए सवाल किया.
0: जी, जी, जी.
1: तो इसमें इनको जांच करानी चाहिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण ये हो सकते हैं कि सिर में दर्द हो, और जो नीचे भुजा में या सीने में दर्द है उसके लिए हार्ट के चेकअप से कराने चाहिए. और ऐसा नहीं है कि आप स्मोकिंग या टोबैको नहीं यूज करते तो हार्ट डिसीज से आप बचे हुए हैं, और कई कारण हो सकते हैं जिससे हार्ट डिसीज हो सकती है, तो उसको चेकअप कराना चाहिए इनको।
0: जी, तो कुछ कॉलर्स वेट कर रहे हैं लेकिन इनके कॉल्स हम बाद में लेंगे, तो चलिए अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।

0: डॉक्टर साहब, कि हमारे जो यंगस्टर्स इनका शिकार हो जाते हैं, खास करके स्कूलों में जो ये चलन चल जाता है, छुप छुपा के जो शुरुआत हो जाती है बच्चों में, यूथ में टोबैको सेवन की, तो सर लक्षण क्या है? ये जो यूथ पीने लगते हैं तंबाकू का सेवन करने लगे, तो ये किन लक्षणों से जो उनके पेरेंट्स या अभिभावक हैं जो ये पहचान करें?
1: या घर में अभिभावकों को ये भांपना बड़ा आसान हो जाता है अगर बच्चे के आसपास बैठते हैं या उसमें ऐसे लक्षण देखते हैं कि उसके होंठ काले हैं या उसके मसूड़ों पे कुछ रंग चेंज हो रहा है या दांतों में चेंज हो रहा है और उसके पास बैठने से स्मेल आती है जो कि छुपा नहीं सकते।

0: एनवायरमेंटल हैवक की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इस स्केल पे है, जो स्मोकर्स हैं वो लगातार धुएं निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उनसे बहुत निकलती है तो ये दूषित करती है। तो तंबाकू को तो हर स्केल पे आपको डिस्करेज करना है, चाहे उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस लाना पड़े, चाहे लॉ लाना पड़े, या टैक्सेस बहुत बढ़ाने पड़े, कोई एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से बैन कर दीजिएगा, तरह तरह के जो उनके दुष्परिणाम है उनको दिखाइए लोगों को, पब्लिक को, कि कैंसर से किस तरह से मौतें होती हैं, हार्ट अटैक्स प्रीमेच्योर कितने कॉमन है स्मोकिंग और टोबैको की वजह से। ये कैंपेन चलना चाहिए और ये चल भी रहा है बहुत एक ऊंचे लेवल पे।
1: तो सिर्फ शरीर पर ही दुष्परिणाम नहीं पड़ते हैं बल्कि हमारा जो वातावरण है, हमारा जो आबो हवा है, वो सब तंबाकू की वजह से दूषित होते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और सर के पसंद का एक और गाना, और ये गाना थोड़ा सा हटकर है डॉक्टर साहब, एक गजल है
0: जी
1: सुरेश वाडकर की आवाज में, फिल्म गमन से।
0: जी जी जी, जी, जी, जी, जी।

0: डॉक्टर साहब की पसंद का बहुत ही खूबसूरत पसंद की गजल हमने सुने, बहुत दिनों के बाद ये गजल सुनने में आई। और डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब भी इंसान परेशान होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो वो अल्टरनेट रास्तों को ढूंढता है, उनमें भी एक तंबाकू उनमें से एक है, लेकिन म्यूजिक की तरफ बढ़ सकता है। तो म्यूजिक से अच्छा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, मेरी पसंद राय है ये। तो सब एक मैसेज है प्रमुख कुमार गौतम जी का फ्रॉम लुधियाना, लिखते हैं कि इनकी उम्र जो है 25 साल है, सोते समय अचानक से सांस रुक जाती है और नींद खुल जाती है। लिखते हैं कि मैं गुटखा खाता हूँ, कहीं गुटखे की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है?
1: ये लक्षण आमतौर से जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, या जिनको खराटे बहुत आते हैं सोने के वक्त, उनमें होता है। इसको हम टिपिकली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, यानी सोते सोते सांस मुश्किल से आएगी और अचानक से रुक जाएगी और वो छटपटा के उठ के बैठ जाएंगे। तो उनको अपनी जांचें एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से करानी चाहिए, और गुटखा इसका प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि गुटखा लगातार खाने से इसके जो बारीक कण हैं, पार्टिकल्स, वो लंग में जमा हो जाते हैं और लंग्स की जो कैपेसिटी है डिफ्यूजन की, ऑक्सीजनेशन की, वो सफर करती है, और ये एक लक्षण उसका हो सकता है। तो उनको एक रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए।
0: जी, कौलेश्वर ठाकुर जी गांव लातेहार झारखंड से लिखते हैं कि तंबाकू चाहे सस्ते हो या महंगे, उनमें उतनी ही मात्रा में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: बिल्कुल, तंबाकू जहर जहर ही है, और चाहे वो सिगार है या सिगरेट है या बीड़ी है या च्यूइंग टोबैको है, ई सिगरेट्स हैं, सभी घातक हैं, सब एक कैटेगरी मारती है मेरे लिहाज से। तो
0: जी सर, आपने बहुत अच्छा एक डिवीजन किया, बीड़ी से लेकर सिगरेट एंड देन सिगार एंड देन नाउ ई सिगरेट
1: और हुक्का।
0: हुक्का
1: जी।
0: तो सर, ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होती है? आपने बताया कि 13 साल का एक बच्चा जिसकी हार्ट सर्जरी हुई, उसने बचपन में इसको शुरू कर दिया था बीड़ी पीना, लेकिन कैसे, किन परिस्थितियों में बच्चा जो है, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में, शुरू कर देता है इसको?
1: वो बच्चा किसी गांव, दिल्ली के पास गांव है, उनमें से था, और मुझे लगता है किसानों के परिवार से था, और घर में जरूर सब लोग बीड़ी पीते होंगे, और वहीं से उस बच्चे ने चुना। और वो एक दिन स्कूल में खो खो खेल रहा था, उस दौरान अचानक से सीने में दर्द हुआ, मूर्छित हुआ वो, और अस्पताल लाया गया उसको, और उसकी जो सबसे प्रमुख आर्टरी थी एलईडी, उसमें एक ब्लॉक था जिसको साफ किया गया। जब हिस्ट्री पूछी गई तो पता लगा कि वो तो पिछले 4-5 साल से बीड़ी पीता था। तो ये मैंने एक दृष्टांत दिया कि इससे लोगों को आगाह होना चाहिए कि किस तरह से स्मोकिंग आपको कितनी जल्दी उम्र में हार्म कर सकती है।
0: जी, तो वैसे नॉर्मली जो आजकल हम स्कूलों में देखते हैं कि बच्चे पीना शुरू कर देते, तो शुरुआत कहाँ से होती?
1: शुरुआत होती है मैडम, ऐसा मेरा मानना है, शायद एक तरह का फैड है, मुंह से धुआं निकलना बच्चों की एक फैंटेसी है, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं उनके मुंह से निकलता अच्छा लगता है, तो वो, और जब ये 2-4-6 सिलसिला शुरू होता है तो एक एडिक्शन पैदा हो जाता है, एक लत होती है कि इसका इफेक्ट छाता है, दिमाग घूमता है, लाइट हेडेड फील करते हैं, और ये एक एडिक्शन बन जाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसी इसकी प्रोसेस है।
0: ओके, अब बच्चे जो शुरू करते हैं उनको, उनसे पूछने पर पता चलेगा कि
1: हाउ डिड दे स्टार्ट।
0: तो हम आखिर में बात करेंगे क्विट करने के ऊपर कि कैसे इसे बचा जा सकता है, कैसे छोड़ा जा सकता है। कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: हाँ जी, नमस्कार, बताइए
2: सर। सर को भी नमस्कार जी।
1: नमस्ते
2: सर, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आजकल युवा वर्ग जो है तो कारोबार की तरफ जा रहा है, और गांव में थोड़ी ये भी धारणा है जी कि हुक्का कम नुकसान देता है, क्या ये सही है जी?
1: ये गलत है साहब, सिर्फ ये जानने से कि घोटके में नीचे पानी होता है और वो छन छन के आपके मुंह में आता है, ये बिल्कुल गलत है। जो निकोटीन के और तंबाकू के दुष्परिणाम है वो पूरी तरह से आपको प्रभावित करते हैं, हुक्के के अंदर भी, जैसे कि वो सिगरेट में प्रभावित करते हैं।
0: जी, थैंक यू कॉल करने के लिए।
2: और
0: इस तरह के डॉक्टर साहब बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो भ्रांतियां कि हुक्का पीना उतना नुकसानदेह नहीं है, तो डॉक्टर साहब अच्छे से बता रहे हैं कि उतना ही नुकसानदेह है जितना कि सिगरेट, बीड़ी, सिगार या ई सिगरेट पीने से नुकसान होता है। हेलो,
3: हाँ नमस्कार जी।
0: हाँ नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्ते जी।
3: डॉक्टर साहब, मैं कम

0: कम 45 इयर्स से सिगरेट पी रहा था। कोरोना काल आया, हाँ, तभी बड़े लॉकडाउन में सिगरेट की ब्लैकिंग चल रही, 100 रुपए का पैकेट 300 रुपए में। तभी मैंने थाम लिया कि आज से सिगरेट नहीं पीने का, तो मैंने सिगरेट छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी सिगरेट। तब से कभी अभी तक पिया भी नहीं, तो मुझे अच्छा लगा आज का प्रोग्राम।
1: तो मैं सबको
0: सब मैं तो सबको बोलूंगा, आपने जितने भी सुनने वाले लोग हैं, कि छोड़ना कोई भी इतनी आसान कोई बात नहीं, हमने दिल में थाम दिया तो छूट जाती है।
1: बहुत अच्छा।
2: तो हम चाहेंगे आप बताइए कि आपने कैसे छोड़ा इसको।
0: मैं जब स्कूल पढ़ रहा था तभी से पी रहा था, तो अभी तक पी रहा था। तभी जब ये कोरोना काल में आया, तभी उसका वो सिगरेट तंबाकू ये सब ब्लैक में चल रही थी। उसका बहुत जो 10 रुपए की सिगरेट थी वो 30-40-50 रुपए में मिल रही थी पैकेट, 100 रुपए का 300-400 रुपए में मिल रहा था। पहले इतना फालतू चीज यानी फालतू बातचीत के लिए इतना पैसा क्यों बर्बाद करे हमारा, जिंदगी भी बर्बाद होती है पैसा भी बर्बाद होता है।
2: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्रेरणा मिलेगी। आपको कभी दोबारा मन नहीं किया?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी गलती से भी वापस पकड़ के आप मुंह में डाला है ऐसा कुछ नहीं।
2: चलिए
0: बिल्कुल नहीं।
2: आपकी जो कहानी है ना वो लोगों को प्रेरणा देगी जो छोड़ना चाहते हैं बीड़ी सिगरेट।
0: नहीं बिल्कुल छोड़ दिया, आपने दिन में थाम दिया ना कि ये नहीं ठीक नहीं करना तो नहीं होता है।
1: बहुत अच्छा,
0: बहुत अच्छा। आज का कार्यक्रम जो आप बता रहे बहुत अच्छा लगा।
1: धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद। जी एस चत्तर साहब ने भी कहा है सर कि आज का प्रोग्राम सुन के लोगों को सबक लेना चाहिए कि तंबाकू के धुएं को त्याग कर गरम गरम दूध पीकर सेहत बनाएंगे। थैंक यू जी एस चत्तर साहब जी। एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्कार, बोलिए।
3: मैं नेपाल से सुरेश बात कर रहा हूँ और इस समय आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ
2: जी।
3: और सर मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं 11वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट हूँ और मेरे को ये सिगरेट बीड़ी ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती है, मगर मेरा संगत मेरे ये ऐसे दोस्तों के साथ है जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। और सर आप मुझे सुझाव दीजिए, राय दीजिए कि इस मोड इस अवस्था में मेरे को क्या करना चाहिए।
1: आपको ऐसे दोस्त चुनने चाहिए जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं। आप उनकी संगत में रहें और इन लोगों से दूर रहें। ये इन लोगों के लिए एक सबक होगा कि हमारा इतना अच्छा दोस्त सिगरेट बीड़ी की वजह से हमसे दूर चला गया। तो इन लोगों को त्याग दीजिए और अच्छे दोस्त चुनिए और उनको सलाह दीजिए, उनको कंपैशन सिंपैथी करिए उनके प्रति कि भाई इसको छोड़ दो, ये ठीक नहीं है और तुमको तो नुकसान होता ही, आपके आसपास वाले भी इससे अनइजी हो जाते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए आप। मैं तो यही कह पाऊँ
3: इतनी अच्छी सुझाव दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते। नेपाल से कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आसपास की बात आई डॉक्टर साहब, तो एक मैसेज है कि डू द सूरज यादव का, डू द स्मोक ऑफ सिगरेट अफेक्ट सराउंडिंग पीपल एट अ डिस्टेंस ऑफ 10-15 meters। लिखा है कि आई एम नॉट अ स्मोकर बट आई गेट इरिटेटेड व्हेन नियर बाय पीपल स्मोक।
1: या आई कैन रिलेट विद हिम। Those who are not smoking, वो जरा से धुएं की स्मेल से भी बहुत अनइजी हो जाते हैं और ये इतनी तेजी से फैलता है कि 10-15 फीट तक जाता है। हो सकता है उसके नुकसान उतने ना हो, लेकिन एक बार को इंसान अनइजी तो हो ही जाता है और बहुत इरिटेबल होता है जब धुआं उसके आसपास से, या इवन जो च्यूइंग टोबैको, आपका ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर तंबाकू खा के बैठा है उसकी स्मेल लगातार पीछे आ रही है, ये बहुत एक अनइजी फीलिंग होती है। आई कैन रिलेट विद दैट।
4: हेलो,
2: हाँ जी,
4: मेरा नाम अंकिता राजपूत है, मैं शेखपुर कसला लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे पापा दरअसल मसाला खाते हैं, तो उनका इलाज क्या है?
1: जी तो ये ईस्टर्न यूपी में मसाला पान खाने का बहुत रिवाज है और बेटे हम तो यही कहेंगे कि आप पिताजी को सलाह दें कि इससे आपको लंबे अरसे में कैंसर होने का बहुत हाई चांस है। जीभ का कैंसर, बक्कल कैंसर, मुंह का कैंसर और लंग कैंसर, ये सब कैंसर्स हो सकते हैं। इसको छोड़ना चाहिए। इसकी उनसे कहिए, इसकी स्मेल भी हमको अच्छी नहीं लगती है और हमको आपके आसपास ही रहना है, तो आप इसे छोड़ दें, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा आपके लिए।
4: जी, थैंक यू।
2: तो सर अब चलते चलते हम जिससे एंड करना चाहेंगे शो का, वो है हाउ टू क्विट।
1: जी मैडम, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें दो तीन चीजें अहम ये है कि एक तो इन लोगों के प्रति हमको थोड़ा सहानुभूति दिखानी है, उनकी भर्त्सना नहीं करनी कि आप हमसे दूर रहिए हम आपको डिसलाइक करते हैं, उनके साथ सिंपैथी दीजिए, उनको राय दीजिए। उनको निकोटीन के अल्टरनेटिव्स हैं, च्युइंगम्स हैं या टैबलेट्स हैं, लोजेंजेस हैं जो शुगर फ्री हैं, उससे तलब को दबा सकते हैं। कुछ दवाइयां हैं ब्यूप्रिनोन जैसी जो हमारे

0: साइकेट्रिस्ट या डी एडिक्शन सेंटर में लोग देते हैं उससे छुड़वा सकते हैं, और अपने तरह से कुछ ऐसे तरीके अपनाएं, जैसे डिले है, आप जो सिगरेट आधा आधा घंटे पीते थे आप उसको अगर दो दो तीन तीन घंटे पे करें शुरू में और अल्टीमेटली छोड़ने का प्रयास करें तो वो कारगर होता है। या सिचुएशंस हैं, एक खास मौके पे जाके आपको तलब लगती है, किसी बार में बैठे हैं या किसी मीटिंग में बैठे हैं या दोस्तों में बैठे हैं, उन सिचुएशंस में आपको तलब लगती है कि अब हम सिगरेट उठाते हैं और हम पीते हैं, उन सिचुएशंस को अवॉइड करिए आप। और कुछ प्राणायाम जैसे सांस के आसन हैं वो कर सकते हैं, जिस वक्त आपको तलब लगे आप वो करना शुरू करिए। या कोई भी अपने आप को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, जैसे म्यूजिक है या रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है या जिम जाना है। जब आपको तलब लगे आप डिस्ट्रैक्शन अपनाइएगा और दूसरी तरफ ध्यान केंद्रित करिएगा। इन सब चीजों से पाया गया है कि सिगरेट और तंबाकू सेवन छूट सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम सभी को मिलकर साथ चलना पड़ेगा, चाहे वो घर वाले हो, पेरेंट्स हो, स्कूल में टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, सोसाइटी के लोग हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें इन लोगों से सहानुभूति रखनी पड़ेगी, इन्हें अलग थलग नहीं करना होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की रिस्क ऑफ टोबैको यूज। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चेयरमैन एंड एचओडी कार्डियोलॉजी पीएलके हॉस्पिटल।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तथा देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य।

0: रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीरगति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपी। इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाज सचेत ने मंगलुरु के तट पर एक समुद्री खोज और बचाव अभियान के दौरान मुश्किल में फंसी भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब समुद्र में मंजू माथा के ढांचे को नुकसान पहुंचने और नाव में पानी भरने के बाद सभी बचे हुए लोगों को रिमोट से चलने वाले लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बचे हुए लोगों को मदद और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मैंगलोर लाया जा रहा है। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि सरकार ने देशभर में दुर्घटना की आशंका वाले और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक, प्रोग्राम अल्फा जन के साथ मैं कंचन। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज प्रोग्राम अल्फा जन में बात होती है करियर की, तो आज हम जिस करियर की बात करेंगे उसके लिए थोड़ा तो इंतज़ार बनता है ना। तो बहुत ही धैर्य से इंतज़ार कीजिए और इस प्यारे से गीत का आनंद लीजिए।

क्या करूं क्या करूं, एक ऐसा खेल जिसमें पूरे गेम में यही चलता रहता है। जी आप कुछ कुछ तो गेस कर रहे होंगे, एक ऐसा खेल जो जिंदगी के बहुत करीब है और वो है शतरंज का खेल। जिंदगी और शतरंज में आप कब और किस व्यक्ति से कहाँ हार जाते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। आज हम शतरंज की बात कर रहे हैं क्योंकि आज प्रोग्राम अल्फा जन में हम यही बात करेंगे कि शतरंज में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। मैं आपके साथ कंचन, जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक। जी क्या आपका भी पहला प्यार शतरंज है?

दोस्तों ईथन वाज और हर्षवर्धन जीबी ये दो ग्रैंड मास्टर्स इस सप्ताह भारत को मिले और पूरी दुनिया जो है ना भारत को शतरंज की महाशक्ति के रूप में देख रही है। दिव्या देशमुख, गुकेश डी, प्रगनंदा और इनके खेल को देखकर अगर आपके मन में भी चेस प्लेयर बनने की चाहत होती होगी तो आप भी अगर शौकिया तौर पर चेस खेलते हैं तब भी आप प्रैक्टिस करके और बहुत अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखकर शतरंज में करियर बना सकते हैं। आज प्रोग्राम अल्फा जन में यही बात होगी कि शतरंज जो 64 खानों का खेल है और ये खेल जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिन्हें पसंद है। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि शतरंज में बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत है। जी साहब, बिल्कुल बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत है, बहुत ही अधिक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छे चेस प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन कैसे, आखिर शुरुआत कैसे की जाए, इस प्रोग्राम में बात होगी कि चेस में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। मैं आपके साथ कंचन, सुनते रहिए बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही मीठे मीठे गीत FM रेनबो पर, दिल से दिल तक।

जी शतरंज में भी बस ये ख्वाब होता है, इतना सा ख्वाब होता है कि रेटिंग जो है वो बढ़ती चली जाए और रेटिंग जल्दी जल्दी करके 2500 के पार हो जाए ताकि आप ग्रैंड मास्टर बन सके। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन और आज बात हो रही है कि चेस में किस तरह से करियर बनाई जाए। दोस्तों सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए, तो जितनी जल्दी हो सके शतरंज को सीखने की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आप छुटपन में शुरुआत नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, लेकिन छुटपन में शुरुआत करनी चाहिए।

इंटरनेशनल रेटिंग वाले चेस कोच की, लेकिन आप उन्हें जो भी कोच के साथ भेज रहे हैं उनकी इंटरनेशनल रेटिंग ज़रूर चेक कीजिए फीडे आईडी पर उनके नाम के साथ, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि कोई भी सिखाने लग जाते हैं, बच्चा खेलेगा सबके साथ लेकिन उनके सिखाने वाले जो गुरु हैं ना वो अच्छी रेटिंग वाले यानी 1800 के पार तो ज़रूर उनको चाहिए, तभी बच्चा एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर सकता है। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, मैं आपके साथ कंचन।

आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है एल्फाजन, और आज बात हो रही है कि शतरंज में किस तरह से करियर बना सकते हैं। वैसे फीडर रेटिंग टूर्नामेंट्स खेलकर ही चेस में इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ाई जाती है, और जिसके लिए चेस प्लेयर्स को लगातार रेटिंग टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। ये टूर्नामेंट्स बहुत थकाने वाले होते हैं क्योंकि लंबे लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं, लगातार बहुत बहुत समय तक बैठना होता है, सोचना होता है, और फिर इतने लंबे टूर्नामेंट्स खेल कर भी खिलाड़ी जो है वो हार जाते हैं तो बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है, और ऐसे में फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना होता है प्लेयर्स को। अपने खेल को लगातार एनालाइज करना होता है और साथ ही चेस के धुरंधर गुरुओं से कोचिंग भी लगातार लेनी होती है। कहते हैं कि चेस एक ऐसा खेल है जिसमें सिर्फ चेसबोर्ड ही सस्ता होता है, बाकी सब कुछ बहुत महंगा होता है, यानी टूर्नामेंट से लेकर ट्रैवल तक और ट्रेनिंग जो है वो बहुत महंगी होती है। इसलिए पेरेंट्स को भी दिल से, दिमाग से और जेब से भी बहुत मजबूत होना होता है। प्रोग्राम चल रहा है एल्फाजन और आज बात हो रही है शतरंज की।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
9: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

जी, भारत है शतरंज की महाशक्ति और आज प्रोग्राम अल्फाजन में हम बात कर रहे हैं कि शतरंज में आप किस तरह से करियर बना सकते हैं। वैसे जितनी जल्दी हो सके वैसे शतरंज की शुरुआत करनी चाहिए, बचपन में छोटपन में शुरुआत करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और कम उम्र में शतरंज शुरू करने के फ़ायदे ये होते हैं कि कोफिशेंट और रेटिंग जो है वो बहुत हाई होती है और खिलाड़ी बहुत कम उम्र में एक अच्छी खासी रेटिंग हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि 18 साल के बाद रेटिंग बढ़ने की गति जो है वो कम हो जाती है और ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने पड़ जाते हैं और हाईली रेटेड प्लेयर्स को हराना भी पड़ता है। तो रेटिंग बढ़ाते हुए खिलाड़ी फिडे मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर और फिर अंत में ग्रैंड मास्टर जैसे टाइटल प्लेयर बन सकते हैं। लेकिन ये टाइटल्स आपको इंटरनेशनल मास्टर और कैंडिडेट ग्रैंड मास्टर टाइटल आपको तभी मिल पाता है जब आप एक निश्चित रेटिंग हासिल करते हैं, 2300 और 2500 की रेटिंग और साथ ही आईएम और जीएम नॉर्म्स भी हासिल करने पड़ते हैं, 3-3 नॉर्म्स हासिल करने पड़ते हैं तभी आप ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर बन सकते हैं। यानी एक बहुत ही कठिन सफ़र होता है जिसमें बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत होती है, साथ ही खिलाड़ी के साथ साथ उनके पूरे परिवार को धैर्य का परिचय देना होता है। लंबी ट्रैवल्स होती हैं, लंबे टूर्नामेंट्स होते हैं और एक के बाद एक टूर्नामेंट्स खेलने होते हैं और आपका जो बच्चा है वो कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो उसे हार का सामना तो करना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं ना कि शतरंज के खिलाड़ी जो होते हैं ना वो दिमाग से बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि वो अपना धैर्य कभी नहीं खोते। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन और मैं कंचन।

एक छत के नीचे जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हर उम्र के खिलाड़ी एक साथ खेल रहे हों तो इतना डिसिप्लिन, इतना ठहराव कहाँ से आ जाता है? यही सवाल दर्शकों के मन में होता है कि क्या जादू है इन खिलाड़ियों में जो हर उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खेल रहे हैं, लेकिन इस तरह से अनुशासन है। शायद यही खूबसूरती है शतरंज के खेल की। पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं, एक शतरंज के खिलाड़ी पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं, तो क्यों ना मित्रता का भाव उनमें ज़रूर होगा, शायद जन्मजात होता है, और तभी वो इतने धैर्य वाले खेल को इतनी खूबसूरती से अंजाम देते हैं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और अगर आप भी शतरंज के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, इस खेल से आपको प्यार है, तो शुरू कर सकते हैं घर में एक छोटे से शतरंज के बोर्ड के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, और खेल खेल में क्या पता आप एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी बन जाएं। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जेन, और इस प्रोग्राम के ठीक बाद यानी 5:05 पर आप सुनेंगे सैटेलाइट्स, और इस प्रोग्राम में आपका साथ देंगी रेशमा। सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

शतरंज जो है एक ऐसा खेल है जिसमें कोई भी मूव, कोई भी चाल बिना वजह के नहीं की जाती है। यानी कोई भी बैड मूव जो है ना आपको मुश्किल में पड़ा सकती है। तो शायद यही खासियत है इस खेल की, और यही खासियत जो है ना जिंदगी को समझने में मदद करती है। मैं कंचन यहीं पर लेती हूँ विदा। जुड़े रहिए FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर रहेंगी रेशमा, और मैं यहीं पर लेती हूँ विदा। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का बहुत अधिक ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का हाथ थामे रखिए, बच्चों को बहुत अधिक प्यार दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, और उन्हें शतरंज के गुर भी आप सिखा सकते हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय होगा, वो प्यार करेंगे शतरंज जैसे खेल से। दीजिए विदा मुझे। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग 4 दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक

0: अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Special Intensive Division SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Karnataka, Meghalaya, Maharashtra and Jharkhand today. As part of the exercise in Delhi, over 13,000 booth level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi, Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that so far India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries. He highlighted the collective responsibility of nations to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. The minister said this while speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi. He underlined the use of digital systems and tools in the transformation of governance in migration.
2: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform, and since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
1: The Eurobank has launched a UPI-based remittance service for cross-border transfers from Greece to India, enabling Indian customers to transfer money almost instantly at minimal costs. The initiative is part of the bank's strategic collaboration with the National Payments Corporation of India, NPCI International Payments Limited. In a social media post, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the inauguration of services at the Eurobank marks another important milestone in the global expansion of India's digital payment ecosystem. Defence Minister Rajnath Singh stressed that a robust economy forms the foundation of strong defence capabilities. Addressing the valedictory session of the Vibrant Gujarat Regional Conference in Vadodara today, Mr. Singh expressed confidence that due to the strong presence in chemicals, electronics, shipbuilding and renewable energy sectors, Gujarat will soon emerge as a global hub for defence.

0: दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। एक गुमनामी का समुंदर है, उसमें ही जाके डूब जाऊंगा। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। मुझे पहचानो, देखो मैं हूं कौन, आ रहा हूं पलट के, मैं हूं डॉन। डॉन
1: प्रिय श्रोता, এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ অনুষা মানি আৰু বিশাল দাদলানীৰ কণ্ঠত এই গীতটি।

0: হোৱা 25টা এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ অথবা এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হৈছে। দৰমহাৰ নিৰিখ মাহে 31,630 টকাৰ পৰা 82,290 টকালৈ, লগতে 7,900 টকা গ্ৰেড পে আৰু অন্যান্য বানচ থাকিব। প্ৰাৰ্থী কমেও 55% নম্বৰ পাই স্নাতক হ'ব লাগিব অথবা যিকোনো বিষয়ৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থকা হ'ব লাগিব। CAIIB, MBA অথবা CA প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থী কমেও 4 বছৰৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে সম্পূৰ্ণ আবেদন পত্ৰ 30 জুনৰ ভিতৰত পোৱাকৈ এই ঠিকনালৈ পঠিয়াব লাগিব। দ্য মেনেজিং ডিৰেক্টৰ, দ্য আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, হেড অফিচ HP ৰোড, পানবজাৰ, গুৱাহাটী, পিন 7810001। বিতং তথ্যৰ বাবে acab.bank.in এই ৱেবছাইটটি চাব পাৰে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, ক্ষন্তেক পিছতে দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে হোৱা বাতৰি ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए UPI सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में

0: এতিয়া শুনক সংস্কৃতত বাতৰি।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তা শ্রূয়ন্তাম প্রবাচিকা নিধি ঝা। আদৌ মুখ্যাঃ বার্তাঃ। ইউরোব্যাঙ্ক সংস্থায় গ্রীসতঃ ভারতম প্রতি ইউপিআই আধারিত ধনপ্রেষণ সেবা সমারব্ধা। উপক্রমোয়ম ঐতিহাসিকঃ বর্ততে ইতি বাণিজ্যোদ্যোগ মন্ত্রী পীয়ূষ গোয়েলঃ সবলম অবোচত। পাকিস্তানস্য FATF সংস্থায়াঃ গ্রে লিস্ট ইত্যস্য নিরীক্ষণস্য আলোচনায়াঃ অনন্তরম ভারতেন এতাম সংস্থাম প্রতি স্বীয় দৃঢ় সমর্থনম পুনঃ প্রকটীকৃতম। জেনারেল ধীরজ সেঠ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ভারতীয় সেনায়াঃ একত্রিংশত্তম সেনাধ্যক্ষত্বেন পদভারম গৃহীতবান। আমেরিকা ইরানয়োঃ শান্তিবার্তায়াঃ ভবিষ্যম প্রতি অনিশ্চিততা বর্ততে যতো হি তেহরান প্রশাসনেন আমেরিকা রাষ্ট্রপতিনঃ ট্রাম্পস্য দোহা নগরে মেলনস্য বিষয়ঃ দৃঢ়তাপূর্বকম খণ্ডিতঃ। ভারতীয় ঋতু বিজ্ঞান বিভাগেন উত্তর প্রদেশ বিহার মধ্য মহারাষ্ট্র কোঙ্কণ গোয়া রাজ্যেষু অতিবৃষ্টেঃ পূর্বানুমানম প্রখ্যাপিতম। অপি চ ক্রীড়াবার্তাসু ফিফা বিশ্বকাপ স্পর্ধা মালিকায়াম মোরকো দেশেন নেদারল্যান্ড দলম পরাভূয রাউন্ড অফ 16 ইত্যত্র প্রবেশম অবাপ্তম। অথ বার্তাঃ বিস্তরেণ। গ্রীস দেশস্য ইউরোব্যাঙ্ক ইতি সংস্থায় ভারতে সীমাপার ধন প্রেষণায় ইউপিআই আধারিত সেবা সমারব্ধা। येन भारतीय ग्राहकाः अत्यल्प व्ययेन अतीव तीव्र गत्या धनं स्थानान्तरितं कर्तुं शक्नुवन्ति। अयम् अभिनव पदक्षेपः यूरोबैंक संस्थायाः भारतस्य नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इत्यस्य च अन्ताराष्ट्रिय शाखया सह कृतेन रणनीतिक सहयोगेन संभवो जातः। सामाजिकान्तर्जालीय पटले प्रसृते सन्देशे भारतस्य वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः संसूचयत् यत् यूरोबैंक संस्थायाम् अस्याः सेवायाः उद्घाटनं भारतस्य अंकीय पारिस्थितिकी तन्त्रस्य वैश्विक विस्तारे एकम् अपरं महत्वपूर्णं ऐतिहासिकं सोपानं वर्तते। तेन अग्रे गदितं यत् ग्रीस देशे यूपीआई सेवायाः साक्षात् प्रसारणेन सह अधुना अर्हाः ग्राहकाः सुरक्षितरूपेण निर्बाधं तत्क्षणमेव धनं प्रेषयितुं शक्ष्यन्ति। यस्मात् पारंपरिक स्थानान्तरण व्ययस्य अपेक्षया व्यवहार शुल्कं न्यूनीभूय केवलं लघुभागः एव अवशिष्यते। भारतेन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इति संस्थायाः प्रति स्वस्य दृढ़ समर्थनं पुनः प्रकटीकृतम्। सा च संस्था आतंकवादी वित्त पोषणस्य अथ धन शोधनस्य विरुद्धं वैश्विक संघर्षे एका अपरिहार्य आधार स्तंभत्वेन वर्तते। इदं वक्तव्यं तदा आगतं यदा पाकिस्तानेन तीव्र निरीक्षणार्थं संस्थायाः ग्रे लिस्ट इत्यत्र FATF इत्यस्य आलोचना कृता। संयुक्त राष्ट्र संघस्य एकस्मिन् कार्यक्रमे संभाषणं कुर्वन् भारतस्य प्रतिनिधिः पी हरीशः अवोचत् यत् FATF संस्थायाः विश्वसनीयतायाः उपरि आक्षेपं कर्तुं प्रयासाः वास्तविक चिन्तां न अपितु निष्पक्ष समीक्षायाः भयमेव जनयति। तेन स्पष्टीकृतं यत् ये देशाः FATF मूल्यांकने प्रतिकूल स्थितिं प्राप्नुवन्ति तैः आतंकवादी वित्तपोषणस्य विरुद्धं स्वीय नीतयः सुदृढाः करणीयाः। सेनाध्यक्षः जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उक्तवान् यत् भारतीय सैन्य बलेषु शक्तिः कस्यापि एकस्य व्यक्तेः न अपितु सैनिकानां सेनानायकानां भूतपूर्व सैनिकानां परिवाराणां देशस्य नागरिकाणां च अविचलित श्रद्धायाः कारणात् भवति। अद्य नवदिल्ल्यां सेनाध्यक्षपदात् पदत्यागं कुर्वन् जनरल द्विवेदी उदघोषयत् यत् चत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अधिकं कालं यावत् भारतीय सेनायां सेवा एव तस्य परमं सौभाग्यमस्ति।
2: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। पश्चिम एशिया देशे उद्वेगम अपाकर्तुम् कूटनीति प्रयासाः आरंभे एव एकेन प्रत्युहेन ग्रसिताः। यतो हि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरानः द्वौ अपि दोहा नगरे प्रवर्तमानायाः अग्रिम चरणस्य चर्चायाः विषये विरोधाभासवद् विवरणं प्रस्तुतवन्तौ। अस्य विषयस्य भविष्यं प्रति अनिश्चितता तदा अधिकम अभवत् यदा अमेरिका राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन कथितं यत् ईरानस्य एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन कतारे उच्चस्तरीय प्रत्यक्षवार्तायाः कृते अनुरोधः कृतः अस्ति, परन्तु तेहरान प्रशासनेन अस्य विषयस्य दृढतापूर्वकं खण्डनं विहितम्। ईरानस्य अधिकारिभिः स्पष्टीकृतं यत् सम्प्रति अमेरिका देशेन सह कस्यापि प्रकारकस्य वार्तायाः योजना नैवास्ति। तेषाम् अवधानम् अधुना केवलं 14 बिन्दु सहमति पत्रस्य पूर्ण क्रियान्वयनस्य उपरि एव केन्द्रितम् अस्ति, ततः पूर्वं कस्यापि व्यापकस्य वा अन्तिम सन्धेः उपरि चर्चा नैव करिष्यते। अद्य दिल्लीं, कर्नाटकं, मेघालयं, महाराष्ट्रं समेत्य झारखण्ड राज्येषु मतदातृ सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमस्य तृतीयः चरणः समारब्धः। उपक्रमस्य अस्य अन्तर्गतं देहल्यां 13,000+ मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारिणः आगामि मासस्य 29 दिनांकं यावत् प्रत्येकं गृहं गत्वा मतदातृ सूचीनां प्रमाणीकरणाय, नवीकरणाय च पूर्वमुद्रितानि प्रपत्राणि प्रदास्यन्ति। देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारी अशोक कुमारः ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् मतदातृ सूचौ आक्षेपान् प्रस्तोतुम् अगस्त मासस्य 5 दिनांकतः सितम्बर मासस्य 4 दिनांकपर्यन्तं समयः निर्धारितः अस्ति। अन्तिमा मतदातृ सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रकाशिता भविष्यति। कर्नाटक राज्ये अस्मिन् अभियाने राज्यस्य 31 निर्वाचन कार्यालयैः सह सम्बद्धाः 59,000+ BLO अधिकारिणः नियुक्ताः सन्ति। मेघालय राज्ये च ईस्ट खासी हिल्स जनपदस्य उपायुक्तः अभिलाष वरणवालः सूचितवान् यत् BLO अधिकारिणः जनपदे स्थितेषु सर्वेषु 21,000+ मतदान केन्द्रेषु गत्वा तेभ्यः मतदातृभ्यः प्रपत्राणि वितरिष्यन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामि 2 दिवसेषु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवाषु अतिवृष्टेः कृते नारंगी वर्णीया संचेतना प्रकटिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य सिक्किम, असम, मेघालय, केरल, माहे, उपहिमालयी, पश्चिम बंगालस्य च भागेषु संभाव्यन्ते। अपरपक्षे विभागेन अद्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ इत्यादिषु राज्येषु उष्ण तरंगस्य पूर्वानुमानम्

प्रकटितम्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् भारतेन षड्विंशतितोप्यधिक देशैः सह अष्टाविंशति प्रवासन गतिशीलता सहभागिता सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि। तेन अवैध प्रवासं शोषणात्मक प्रथाः कपटपूर्त मध्यस्थतां च प्रतिरोद्धुं राष्ट्राणां सामूहिक उत्तरदायित्वं प्रति विशेषरूपेण उपादिष्टम्। हूल दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेश शासनस्य अन्यायस्य विरुद्धं दृढतया समुपस्थितेभ्यः सिंधो काहू चंद भैरव फूलो झानू इत्यादिभ्यः सहैव सर्वेभ्यः वीर जनजातीय जनेभ्यः भावपूर्णां श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मोरक्को पैराग्वे देशौ राउंड ऑफ 16 चरणे स्वस्थानं सुरक्षितवन्तौ। मैक्सिको देशस्य ग्वाडालूप नगरे आयोजिते रमणीये द्वन्द्वे मोरक्को दलेन नीदरलैंड दलं 3-2 इत्यंकैः पराजितम्। अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सास प्रान्ते आइवरी कोस्ट तथा नॉर्वे इत्यनयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।

0: অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত 257খন গাঁও বানৰ কবলত। কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ গুৱাহাটীত ৰাজ্যৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কাম কাজ পৰ্যালোচনা। কেন্দ্ৰীয় কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ আজিৰে পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। গুৱাহাটীত বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণ জব্দ হোৱা ঘটনাৰ সৈতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাংসোণ সৰবৰাহকাৰী জড়িত থকাৰ আৰক্ষীৰ তথ্য লাভ। আৰু বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা আইভৰি কোষ্ট নৰৱে আৰু ফ্ৰান্স ছুইডেনৰ মুখামুখি। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। यह पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वीं सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया,

मुक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খণ্ডিক পাছতে ক্ৰমে শুনিবলৈ পাব সমাচাৰ সন্ধ্যা, নিউজ এট নাইন আৰু স্পটলাইট।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
3: One key pillar which has brought about a transformation.
4: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
1: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
5: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
6: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
8: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माही, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।